0: गोकुल जी है।
1: ठीक है, क्या आप लोगों ने तीर्थस्थान के बारे में सुना है?
2: हाँ
1: हाँ
2: अध्यापिका जी।
1: क्या आप कभी तीर्थस्थान पर गए हैं?
0: हाँ
2: अध्यापिका
0: अध्यापिका जी।
2: जी।
1: अच्छा, आज हम CBSE की मल्हार पाठ्य पुस्तक के 8वीं कक्षा के 14वें पाठ हरिद्वार के बारे में पढ़ेंगे। हरिद्वार एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह एक रोचक यात्रा वृत्तांत है जिसे हिंदी साहित्य के जनक श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। यह पाठ कविवजन सुधा नामक पत्रिका के संपादक को लिखे गए पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। क्या आप जानते हैं यात्रा वृत्तांत क्या होता है?
0: हाँ
2: हाँ
0: अध्यापिका
2: अध्यापिका जी।
0: जी।
1: यात्रा वृत्तांत माने क्या है?
0: अध्यापिका जी यात्रा वृत्तांत यानी ट्रैवलॉग है ना?
1: ठीक है, मेरा क्या आप जानते हैं?
2: हाँ अध्यापिका जी, यात्रा वृत्तांत इस प्रकार की रचना है ना, जिसमें लेखक अपनी अनुभवों का रोचक ढंग से वर्णन करता है।
1: ठीक है, यात्रा वर्णन वह रचना है जिसमें लेखक अपनी यात्रा के अनुभवों, देखे गए स्थानों, लोगों, प्रकृति और कठिनाइयों का रोचक तथा जीवंत वर्णन करता है। तो आप लोग हरिद्वार के बारे में सुना है?
0: हाँ
1: हाँ
0: अध्यापिका
1: अध्यापिका
0: जी।
1: जी। हरिद्वार कहाँ है?
2: अध्यापिका जी, हरिद्वार उत्तर प्रदेश में है ना?
1: उत्तराखंड में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित हरिद्वार पाठ का मुख्य संदेश भारतीय संस्कृति, प्रकृति और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम दिखाना है। यह यात्रा वृत्तांत 1871 में हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, गंगा के पावन तट, साधुओं के त्यागमय जीवन और शांत वातावरण के माध्यम से मन की शांति व आध्यात्मिक सुख को रेखांकित करता है। हरिद्वार उत्तराखंड का एक प्रमुख प्राचीन शहर और पवित्र तीर्थस्थल है, जिसे देवताओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित होता है। ठीक है,
2: ठीक है अध्यापिका
1: अध्यापिका जी।
2: जी।
1: क्या आप कहीं घूमने गए हैं?
0: हाँ
2: हाँ अध्यापिका
0: अध्यापिका
2: जी।
0: जी।
1: आप कहाँ गए थे मीरा?
2: अध्यापिका जी, मैं बैंगलोर गया था।
1: ठीक है, गोगुल।
0: अध्यापिका जी मैं कुछ महीने पहले चेन्नई गया था।
1: आपको यात्रा क्यों अच्छा लगा?
2: मुझे वहाँ के जगह देखना बहुत बढ़िया लगा।
0: अध्यापिका जी मुझे वहाँ के खाना और लोगों को बहुत अच्छा लगा।
1: प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपनी यात्रा के अनुभव बताए हैं। देखिए बच्चों, मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए।
2: ठीक
1: ठीक
2: है
1: है
2: अध्यापिका
1: अध्यापिका जी।
0: जी।
1: पहले लेखक से परिचय। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल का उद्घोष करने वाली भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता, नाटक, निबंध और यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया। इन्होंने कविवजन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और स्त्रियों के लिए बाला बोधिनी पत्रिकाएं प्रकाशित की। इनकी रचनाओं में समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वाधीनता की भावना के स्वर सुनाई देते हैं। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और सरयू पार की यात्रा इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। उनकी भाषा सरल, भावपूर्ण और चित्रात्मक होती है, जिससे पाठक को दृश्य जीवंत रूप में दिखाई देता है। हरिद्वार पाठ में उन्होंने अपने यात्रा अनुभव को बहुत सुंदर और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। कविवजन सुधा 14 अक्टूबर सन 1871 ईस्वी। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी यात्राओं के लिए चर्चित रहे हैं। उन्होंने भारत के अनेक गांवों और नगरों की यात्राएं की और उनके विषय में पत्र पत्रिकाओं में लिखा भी। प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व का अध्ययन करने में यात्राओं से उन्हें बहुत सहायता मिली। वे मानते थे कि शिक्षा की पूर्ति पुस्तकों से ही नहीं यात्राओं से भी होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1871 ईस्वी में हरिद्वार की यात्रा पर गए थे। वे लिखते हैं, मेरा तो चित वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। हरिद्वार की प्रकृति, वहां के पर्वतों, पक्षियों, वृक्षों और कलकल बहती गंगा, वहां के घाटों, लोगों, दुकानों और गंगा तट के मनोरम दृश्यों को देखकर वे अति आनंदित हुए। इस पाठ में उन्होंने कविवजन सुधा पत्रिका के संपादक के नाम पत्र लिखे हुए अपनी उसी हरिद्वार यात्रा का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया। इस पत्र में प्रयुक्त हिंदी का स्वरूप लगभग 150 वर्ष पुराना है। गोगुल पढ़िए।
0: ठीक है अध्यापिका जी। लेखक से परिचय। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल का उद्घोष करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता, नाटक, निबंध और यात्रा वृद्धांत आदि अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया। इन्होंने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और स्त्रियों के लिए बाला बोधिनी पत्रिकाएं प्रकाशित की। इनकी रचनाओं में समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वाधीनता की भावना के स्वर सुनाई देते हैं। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और सरयू पार की यात्रा इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। उनकी भाषा सरल, भावपूर्ण और चित्रात्मक होती है, जिससे पाठक को दृश्य जीवन रूप में दिखाई देता है।

0: हरिद्वार पाठ में उन्होंने अपने यात्रा अनुभव को बहुत सुंदर और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है।
1: क्या आप बता सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कुछ प्रसिद्ध कृतियों के नाम?
0: उनके कुछ प्रसिद्ध कृतियां इस प्रकार है: काव्यवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और स्त्रियों के लिए बालाबोधिनी पत्रिकाएं।
1: आपकी भाषा की विशेषता?
0: अध्यापिका जी, इनकी रचनाओं में समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वाधीनता की भावना के स्वर सुनाई देते हैं।
1: ठीक है, मेरा अगला खंड पढ़िए।
2: हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी यात्राओं के लिए चर्चित रहे हैं। उन्होंने भारत के अनेक गांवों और नगरों की यात्राएं की और उनके विषय में पत्र पत्रिकाओं में लिखा भी। प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व का अध्ययन करने में यात्राओं से उन्हें बहुत सहायता मिली। वह मानते थे कि शिक्षा की पूर्ति पुस्तकों से ही नहीं यात्राओं से भी होती है।
1: इस खंड से हमें पता चला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी मानते थे कि शिक्षा की पूर्ति पुस्तकों से ही नहीं यात्राओं से भी होती है। അതായത് ഭാരതേന്ദു ഹരിശ്ചന്ദ്ര വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പൂർത്തിയാകുന്നത് പുസ്തക വായനയിലൂടെ മാത്രമല്ല യാത്രകളിൽ കൂടിയാണ്. യാത്രകളെ ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഭാരതേന്ദു ഹരിശ്ചന്ദ്ര. അഗല ഖണ്ഡ് പഠിയേ ഗൂഗിൾ.
0: ठीक है अध्यापिका जी, ഭാരതേന്ദു ഹരിശ്ചന്ദ്ര 1871 ഈസ്വി മേ ഹരിദ്വാർ കി യാത്ര പ ഗേ തേ. वे लिखते हैं, मेरा तो चित वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। हरिद्वार की प्रगति, वहां के पर्वतों, पक्षियों, वृक्षों और कलकल बहती गंगा, वहां के घाटों, लोगों, दुकानों और गंगा तट के मनोरम दृश्यों को देखकर वे अति आनंदित हुए। इस पाठ में उन्होंने काव्यवचन सुधा पत्रिका के संपादक के नाम पत्र लिखते हुए अपनी उसी हरिद्वार यात्रा का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। इस पत्र में प्रयुक्त हिंदी का स्वरूप लगभग 150 वर्ष पुराना है।
1: तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हम बताता है कि मेरा तो चित वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। അതായത് അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുകയാണ്, ഹരിദ്വാറിൽ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് വളരെ പരിശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായി തീർന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ഈ കവിവചൻ സുധയിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഏതൊരു കത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം 150 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഹിന്ദി ഭാഷയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹം ആഗെ പഠേങ്കി. ശ്രീമാൻ കവിവചൻ സുധാ സമ്പാദക് മഹാമഹിം മിത്രവരേഷു, मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है कि मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। यह भूमि तीन और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है, जिन पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहलहा रही है, और बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े है मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं, और साधुओं की भांति खाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते है। आहा, इनके जन्म भी धन्य है जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहां तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दिखाई पड़ती थी, मानो हरे गलीचा की जात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी थी। एक और त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है, जो राजा भगीरथ के उज्जवल कीर्ति की लतासी दिखाई देती है। जल यहां का अत्यंत शीतल है और मिष्ट भी वैसा ही है मानो चीनी के पने को बर्फ में जमाया है। रंग जल का स्वच्छ और श्वेत है और अनेक प्रकार के जल जंतु कल्लोल करते हुए यहाँ श्री गंगा जी अपना नाम नदी सत्य करते है, अर्थात जल के वेग का शब्द बहुत होता है, और शीतल वायु नदी के उन पवित्र छोटे छोटे कणों को लेकर स्पर्श ही से पावन करता हुआ संचार करता है। यहाँ पर श्री गंगा जी दो धारा हो गई है, एक का नाम नील धारा, दूसरी श्री गंगा जी ही के नाम से। इन दोनों धारों के बीच में एक सुंदर नीचा पर्वत है और नील धारा के तट पर एक छोटा सा सुंदर चुटीला पर्वत है, और उसके शिशर पर चंडिका देवी की मूर्ति है। यहाँ हरि की पेड़ी नामक एक पक्का खाट है और हिम स्नान भी होता है। विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता है, दूसरा देवता नहीं। यूं तो वैरागियों ने मठ मंदिर का ही बना लिए है। श्री गंगा जी का पाठ भी बहुत छोटा है पर वेग बड़ा है। तट पर राजाओं की धर्मशाला यात्रियों के उतरने के हेतु बनी है और दुकानें भी बनी है, पर रात को बंद रहती है। ये ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य है सो वहां रहते ही नहीं। प्रस्तुत अंश में लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र कैवचन सुधा पत्रिका के

0: संपादक के नाम पत्र लिखते हुए हरिद्वार की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। लेखक को हरिद्वार के बारे में लिखकर बहुत आनंद मिल रहा है, क्योंकि एक ऐसी पवित्र जगह है जहां पहुंचते ही मन शुद्ध और शांत हो जाता है। यह जगह तीनों ओर से हरे भरे पहाड़ों से घिरी हुई है। इन पहाड़ों पर तरह तरह की हरी भरी लताएं ऐसे लहरा रही है जैसे सज्जन लोगों की शुभ इच्छाएं। वहां के पेड़ इतने विशाल है कि वे ऐसे लगते हैं मानो एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हो, और जैसे साधु लोग धूप ओस और बारिश सह करते हैं, वैसे ही ये पेड़ भी मौसम की मार चुपचाप झेलते हैं। पुण्य भूमि का मतलब है पवित्र स्थान या धार्मिक स्थल। वर्णन विवरण देना। प्रवेश का मतलब है अंदर जाना। वल्ली का मतलब है बेलेम या लताए। सज्जनों का मतलब है भले आत्मी। तपस्या ध्यान या साधना। खाम का मतलब है धूप। तो अगला भाग पढ़िए।
1: आहा, इनके जन भी धन्य है जिससे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। फल फूल गंध छाया पत्ते छाल बीज लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि छले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोर पूर्ण करते हैं।
0: ठीक है। आहा का मतलब है आश्चर्य और प्रशंसा का भाव। अर्थी का मतलब है मृत शरीर। विमुख का मतलब है चीज में रुचि न रखना या विरक्त। गंध का मतलब है सुगंध। छाल वृक्ष की बाहरी परत। मनोर्थ मन की इच्छाएं। दुष्ट बधिक शब्द का अर्थ है क्रूर शिकारी। हरियाली हरे रंग की प्रकृति। गलीचा काली। यात्रियों का मतलब है तीर्थ यात्रियों। बिछायत बिछी हुई चीज। प्रस्तुत अंश का व्याख्या इस प्रकार है। लेखक कह रहे हैं कि इन पेड़ों का जन्म वास्तव में धन्य है, क्योंकि ये मनुष्यों से कभी मुख नहीं मोड़ते। अर्थी यानी मृत शरीर की ओर संकेत यानी जीवन और मृत्यु दोनों में काम आते हैं। वे अपने हर अंग फल फूल पत्ते छाल लकड़ी बीज यहाँ तक कि जलने के बाद कोयले और राख से भी लोगों के काम आते हैं। कोयले का मतलब है
1: चारकोर।
0: राख का मतलब है
2: बस
0: बस। अगला खंड पढ़िए।
3: सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बदिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दिखाई पड़ती थी, मानो हरे गलीचा की यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी थी। एक और त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है जो राजा भगीरथ के उज्जवल कीर्ति की लदासी दिखाई देती है।
0: ठीक है। लेखक उन्हें सज्जन कहते हैं, किन्हें पेड़ को सज्जन बताते हैं, क्योंकि वे पत्थर मारने पर भी बदला नहीं लेते, उल्टे फल दे देते हैं। लेखक बताते हैं कि इन पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी बेखौफ होकर चहचहा रहे हैं। उन्हें शहर के किसी शिकारी या बुरे आदमी का डर नहीं है। वर्षा के कारण चारों ओर इतनी हरियाली है कि ऐसा लगता है जैसे हरियाले गलीचे, गलीचे का मतलब है कारपेट, को जमीन पर तीर्थ यात्रियों के आराम के लिए बिछा दिया गया हो। लेखक गंगा नदी की सुंदरता का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि गंगा की पवित्र धारा बह रही है जो राजा भगीरथ की महानता की एक चमत्कार लता जैसी प्रतीत होती है। ഭഗീരഥൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് തന്റെ പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മോക്ഷം നേടാനായി തപസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അതിൽ പ്രസിദ്ധിയായിട്ട് ഗംഗാദേവി ഭൂമിയിലേക്ക് വരാമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഗംഗാദേവി ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ വലിയൊരു പ്രളയം ഉണ്ടാകും എന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശിവഭഗവാൻ ഗംഗാദേവിയെ തന്റെ ജടയിൽ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ഭഗീരഥന് മോക്ഷം കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കഥ നമ്മുടെ പുരാണത്തിലുണ്ട്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാനത പോലെയാണ് ഗംഗാനദി ഒഴുകുന്നതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭാരതേന്ദു ഹരിശ്ചന്ദ്ര പറയുന്നത്. एहाम का पानी बहुत ठंडा और मीठा है, जैसे चीनी का टुकड़ा बर्फ में जमाया गया हो। गंगा का पानी बिल्कुल साफ और सफेद दिखाई देता है और इसमें तरह तरह के जीव आनंद से उछल कूद करते हैं। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।
1: धन्यवाद अध्यापिका जी।
4: हिंदी पाठम पढ़िपिचद पेयाडे शांति निकेतन स्कूलिले हिंदी अध्यापिका अर्चना, पढ़िचवर मीरा नायर एल, गोगुल जी एन्निवर।

आदौ मुख्य वार्ताः। डिजिटल इंडिया अभियानस्य एकादश वर्ष पूर्तौ प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अनेन अभियानेन निर्धनाः शोषिताश्च जनाः सबलीकृताः, सहैव लक्षाधिकानां नागरिकाणां जीवनं परिवर्तितम्। विकसित भारत जीरामजी अधिनियमस्य 25

0: राज्य प्रशासनेन सह पूर्ण समन्वयं कृत्वा प्रभावितेभ्यः जनेभ्यः व्यापकं वित्तीयं संरचनात्मकं च साहाय्यं प्रदास्यति। राज्ये तावता चत्वारः जनाः मृत्युमुपगताः, एकविंशति जनाः व्रणिताः समभवन्। राज्यस्य अष्टाविंशति जनपदेषु नवनवत्यधिक चतुश्शतोत्तर नवतिसहस्राधिकाः जनाः अस्मात् प्रकोपात् प्रभाविताः सन्ति। अरुणाचलप्रदेशे समीक्षां विधाय केन्द्रीयमन्त्रिणौ चौहान रिजिजू इत्येतौ असमराज्यस्यापि जलाप्लावेन ग्रस्तक्षेत्राणां निरीक्षणाय प्रस्थितवन्तौ। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नवनियुक्तः सेनाध्यक्षः जनरल धीरसेठ इत्येषः वर्धमान सुरक्षा वातावरणस्य समाह्वानानां निवारणाय सेनायाः आधुनिकीकरणस्य आवश्यकतायाः विषये अवधानं प्रदत्तवान्। एकत्रिंशत्तम सेनाध्यक्षत्वेन कार्यभारं स्वीकृत्य अद्य प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् जनरल सेठः अधोरेखितवान् यत् भारतीयसेनायाः उद्देश्यं प्रविधीयुतस्य भविष्यस्य कृते सज्जीभूतस्य सेनायाः निर्माणमस्ति। सहैव यश्च प्रत्येकस्मिन् विषये सशक्तं बहुविधक्षेत्रेषु कार्यं कर्तुं च समर्थं भवेत्।
1: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारिका दूतमार्गं संयोजयन् दिल्लीनगरे अष्टचत्वारिंशदधिकैकशत एई राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते षड्मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय अद्य सर्वकारेण अनुमतिः प्रदत्ता। अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य चतुस्त्रिंशत् इत्यस्य सप्तदशांशोत्तर सप्तदशाधिकैकशत किलोमीटर सुदीर्घस्य कानपुर कवराई खण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगम नियन्त्रित मार्गस्य निर्माणमपि सर्वकारेण अनुमोदितमस्ति, यत्र संरचनाः षड्मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पनाः सन्ति।
2: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: भारतीय ऋतु विभागः अवदत् यत् आगामि दिनेषु दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृट्कालः अग्रे गमिष्यति। आगामि दिनद्वयोः उत्तरप्रदेशे बिहारे उत्तराखण्डे ओडिशा प्रदेशे विदर्भ क्षेत्रे च प्रचण्डतः अतिवृष्टेः ऋतु विभागेन नारंगवर्णीया पूर्वसंचेतना प्रसारिता। फीफा विश्वकप क्रीडायां मेक्सिको देशः अद्य प्रातः मेक्सिको सिटी क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 क्रीडायां इक्वाडोर देशं 2-0 पराजित्य राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान्। नॉर्वे देशः अपि टेक्सास नगरे आइवरी कोस्ट देशं 2-1 पराजित्य 16वें चरणे प्रविष्टवान्। इति वार्ताः।
3: इपोल प्रादेशिक वार्तकल केल्काम
4: आकाशवाणी। നമസ്കാരം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ശ്യാമ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ജനജീവിതം സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ മാർഗമാണ് സാങ്കേതികവിദ്യയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. 16ാം കേരള നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം പൂർത്തിയാക്കി സഭ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു. ധനബിൽ നിയമസഭ പാസാക്കി, സഭ ബഹിഷ്കരിച്ച് പ്രതിപക്ഷം. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഹരി കൈമാറ്റത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് നിയമസഭയിൽ പ്രസ്താവന നടത്തി മന്ത്രി

0: ഇനി 8:45 സമാചാർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹി റിലെ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. मुख्य समाचार. सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी. विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू. केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की. सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए. जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची. कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी. भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा. और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा. अब समाचार विस्तार से. सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है.
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी. 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा. ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है. इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है.
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है. परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा. श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है. इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है.
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में. कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर्स का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा. 242 किलोमीटर्स का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है. 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको. कानपुर हमीरपुर महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे.
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा. विकसित भारत

0: रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
1: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298 रुपए 80 पैसे प्रतिदिन से बढ़कर 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनभागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल

0: और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फर्रुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रूपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला

0: मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गो से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.